फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना.

खबरी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनो वालों, आज बुधवार का दिन है, 8 जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को ये दिन लाख लाख बधाई हो, मुबारक हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। घड़ी की ओर देखा जाए 7 बजकर प्रोग्राम में 4 मिनट व्यतीत हो चुका है। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 03-262-66-11। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए दुनिया की कोने कोने तक ये प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं। और हॉलैंड देश के बीच में मिड नीदरलैंड और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में और आसपास की शहरों में दूर दूर शहरों में ये प्रोग्राम DAB प्लस रेडियो के जरिए भी आप सुन सकते हैं अपना मोटरकार में अपना घरों में। रेडियो SBS का वेबसाइट के जरिए भी आप मेल कर सकते हैं और उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन के जरिए रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। हर सुबह की तरह आज सुबह भी प्रोग्राम भजन यात्रा आप जरूर सुनते ही रहना जो आप सभी और सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है। पहला भजन हमेशा होते हैं सुबह सुबह लो शिव का नाम। हरिहरन की आवाज में ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है और इसी सुंदर भजन के साथ प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुन वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए बस आरंभ किया जा रहा है। आप सभी सुन वालों के लिए ये सुंदर सा भजन पेश किया जा रहा है और आपकी खास

रेडियो वेस्ट में इसकी जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो वेस्ट में इसकी जरिए प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। घड़ी की ओर देखा जाए 7:00 प्रोग्राम में 12 मिनट वेटेड हो चुका है 12 मिनट ओवर सुइफ स्टूडियो टाइट हो चुका है। चले अब की बार खास सुंदर भजन आज की भजन यात्रा प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है मनीष की आवाज में मिलकर ये सुंदर सा भजन को सुनते

मनीष की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। हर सुबह ये प्रोग्राम सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। बुधवार का दिन है, 8 तारीख जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले ये सुंदर भजन की ओर। भजन का बोल है नाम प्रभु का, एल्बम का नाम है आई तेरी शरण में। उसी एल्बम में से निकाल कर ये सुंदर सा भजन शर्मा जी की आवाज में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए अति सुंदर भजन शर्मा जी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए उसी सुनने वालों है जो देश विदेश में भी प्रोग्राम भजन यात्रा इस वक्त सुनते हैं, आप सभी सुनने वालों को भी वेलकम स्वागत किया जा रहा है और प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में विपिन सचदेवा की आवाज में एक सुंदर भजन पेश किया जा रहा है, आप सभी सुनने वालों को भी वेलकम स्वागत किया जा रहा है और प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में विपिन सचदेवा की आवाज में एक सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

सेवा में बस पीस किया जा रहा है। घड़ी की ओर देखा जाए, 2 मिनट व्यतीत हो चुका है सुबह साढ़े 7 बजकर और काफी सुनने वालों है जो तैयारियां कर रहे हैं अभी काम की ओर, नौकरी की ओर जाने के लिए। सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम अगर मौका मिले तो जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में अब की बार ये सुंदर भजन की ओर हम आपको ले

सुंदर और सुंदर भजन अमित सिंह के आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए एक सुंदर सा भजन अब की बार जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए आसरो मीठे भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों को काफी पसंद आते हैं। हर सुबह ये प्रोग्राम आप सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-2266611। इसी तार की नंबर पर स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं और इसी तार की नंबर पर रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं और उसी है ऐप के जरिए भी आप स्टूडियो की ओर तार कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में श्री गणेश जी का एक सुंदर सा चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में।

पोटवाल जी की आवाज में सुंदर सा श्री गणेश जी का चालीसा बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन। और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए, उनके पूरा परिवार के लिए और सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, उनके लिए, उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन के साथ ये सुंदर सा गणेश जी का आरती आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

और आप सुनते ही रहना, आज का मौसम भी खूबसूरत और सुहाना मौसम होने वाले हैं। बीते हुए साल का एक फिल्म जो रिलीज किया गया है सिकंदर, उसी फिल्म का एक गाना अरिजीत

0: कुछ भी नहीं है, अरिजीत सिंह की आवाज में गाना पेश की गई फिल्म का नाम सिकंदर। बीते हुए साल ये फिल्म जो रिलीज किया गया, हम आपके बिना कुछ भी नहीं। 13 मिनट 13 मिनट व्यतीत हो चुका है सुबह 8:00 8 जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को अनहेलो खुदा मोर्फ गुड मॉर्निंग। सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर रहे और रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है गुड मॉर्निंग खुदा मोर्फ। आप सभी सुनने वालों को, सभी सुनने वालों जो ऐप किया है, आप सभी को भी शुभ सुबह शुभ दिन। चले प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। जुबिन प्रोग्राम में होगा।
1: तुझसे दूर मैं कहीं वजह के लिए,
0: संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS, जुबिन नौटियाल।

Jubin Nautiyal. जुबिन नौटियाल की आवाज में ये गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो एस बी एस के जरिए. शेर उत्रेख लाइव फनाउट एट हट फॉर नीदरलैंड फनाउट मिड नीदरलैंड. रेडियो एस बी एस का ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में. अगर आपको ऐप करना है रेडियो एसबीएस का ऐप पर, तो जरूर अपना मोबाइल फोन पर आप जाइए रेडियो एसबीएस का वेबसाइट पर रेडियो SBS.NL. उसी वेबसाइट की जरिए आप सीधे हमारा रेडियो एसबीएस का ऐप पर ऐप कर सकते हैं. सोनू निगम एंड कृष्णा कली परम सुंदरी फिल्म का नाम. ये फिल्म भी बीते हुए साल में रिलीज किया गया.

परम सुंदरी फिल्म का गाना पेश की गई सोनू निगम और कृष्णा कली की आवाज पे रेडियो एसबीएस के जरिए ये गाना भी आपने सुना। मिड नीदरलैंड हॉलैंड देश के बीच में और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में हमारा प्रोग्राम डे अबे प्लस रेडियो के जरिए बस पेश किया जा रहा है। और इन दिनों ज्यादा सुनने वालों डे अबे रेडियो के जरिए बस सुनते हैं प्रोग्राम को। हॉलैंड देश के अंदर में 6.2 मिलियन डे अबे बिक चुका है। 6.2 मिलियन जीते हुए सप्ताह खबर किया गया है। 6.2 मिलियन डे अबे रेडियो बिक चुके हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा लोग डे अबे रेडियो के जरिए बस प्रोग्राम को सुनते हैं। अच्छी आवाज में सुंदर आउटफॉल इंटरनेट के जरिए आप सुनेंगे तो हो सकता है कभी कभी आपका इंटरनेट जब भी गिर जाएंगे तो आवाज रेडियो एसबीएस का आप नहीं सुन पाएंगे। लेकिन जहां जहां डे या बे के जरिए हमारा प्रोग्राम सुनाई देता है तो कोशिश कीजिए डे या बे रेडियो के जरिए प्रोग्राम सुनने के लिए हमेशा साफ और सुंदर आवाज में सुनाई देता है। आने वाले साल में एफएम आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाएंगे तो उसकी जगह पर डे या बे आ गया है। तो हमारा प्रोग्राम डे या बे रेडियो के जरिए भी सुनाई देता है पूरा की पूरा दूर दूर शहरों में मिड नीदरलैंड में और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में भी। और आने वाले दिनों और भी शहरों में ये प्रोग्राम डे अबे रेडियो के जरिए बस सुनाई देगा। चले प्रोग्राम में सोनू निगम एन श्रेया जी की आवाज में गाना बस पेश होगा सर जमीन फिल्म का नाम। और ये फिल्म भी बीते हुए साल रिलीज किया गया है।

और श्रिया जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले प्रोग्राम में आपकी बार गाना जो पेश होगा अभिजीत और अलका जी की आवाज में, अभिजीत और अलका जी की आवाज में ये गाना पेश किया जाए।

का यज्ञ और अभिजीत की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। गीत जो अबकी बार पेश होगा अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज में।

चौहान और अरिजीत सिंह की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं।

फिल्म से ये गाना भी आपने सुना। सुन वालो रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए हमारा ये प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं। शान और श्रेया घोषाल प्रोग्राम में

कर प्रोग्राम में 5 मिनट व्यतीत हो चुका है। बुधवार 8 तारीख जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और यहां से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आप सभी सुनने वालों को खबर किया जा रहा है कि आज शाम 6 बजे प्रोग्राम में अफसोस के साथ मृत्यु समाचार पेश किया

स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। उसके बाद पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश होगा। चले प्रोग्राम में पहला गाना की ओर। हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनवालो रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL और उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम सुनाई देता है और जिस तरह से भी आप सुनना चाहेंगे आप हमारा ये रेडियो SBS का प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। और बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी फरमाइश हुआ है इस तिहारे जरूरी खबरें रिक्लाम के लिए टेलीफोन नंबर है 03025656060 या तो ईमेल कीजिए रेडियो SBS का वेबसाइट की जरिए। आपको खबर किया जा रहा है रेडियो SBS का कंतूर का टेलीफोन नंबर जो है 24 घंटा लगातार आप सभी के लिए होता है। और आपको भी खबर किया जा रहा है जरूर आप तार कीजिए हर एक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इन्फो लेने के लिए। लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में अबकी बार पेश किया जा रहा है। एक तू जो मिला तो सारी दुनिया मिली है। गाना जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और वो भी लता मंगेशकर की आवाज में, लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

डॉक्टर की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आज की प्रोग्राम में जो अभी आपने सुना। हमारे सभी सुनने वालों को वेलकम कहा जा रहा है। जिन लोग प्रोग्राम को इस वक्त सुनते हैं और रोजाना की तरह आज भी बहुत सी सुनने वालों बस प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, किशोर कुमार एंड आशा प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं अबकी बार फिल्म जवानी दीवानी, उसी खास फिल्म का गाना की ओर किशोर कुमार एंड आशा जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश किया।

के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए आज के प्रोग्राम में किशोर और आशा जी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है। अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम यादों की बारात, सॉन्ग बाय किशोर एंड आशा।

खूबसूरत प्यार भरी गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए किशोर दाशा जी की आवाज में ओ मेरी सोनी। फिल्म यादों की बारात दूसरी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की ये प्रोग्राम में जो पेश की गई है। तो उसी सुनने वालों बस स्टूडियो की ओर तार कर रहे हैं, अपना अपना रिएक्शन कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। टेलीफोन नंबर है स्टूडियो का 03-262-66-66-11। मुकेश और

तुम्हारी कसम फिल्म का नाम आशा भोसले और मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना आज की प्रोग्राम में किशोर एन आशा जी की आवाज में पेश किया जा रहा है और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम है जुदाई। उसी फिल्म का ये गाना अब की बार आप सुनते ही रहना। 1980 का फिल्म है, फिल्म जुदाई, गाना जो अब की बार आप सुनेंगे मार गए मुझे तेरी जुदाई, सॉन्ग बाय किशोर कुमार एन आशा भोसले। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं।

की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए मार गए मुझे तेरी जुड़ाई। खूबसूरत प्यार भरी गाने रेडियो SBS के जरिए बस आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चलिए प्रोग्राम में अब की बार गाना जो पेश किया जा रहा है द माइटी मुकेश और आशा जी की आवाज में मोहब्बत इसको कहते हैं। स्पेशल गाना जो आज के प्रोग्राम में मांग किया है इंडिया भारत देश नोएडा से।

मोहब्बत इसको कहते हैं। मुकेश और आशा जी की आवाज में ये काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। बहुत से सुनने वालों हैं जो इस वक्त प्रोग्राम सुनते हैं, देश विदेश में भी सभी को वेलकम, और खासतौर पर रोटरडम शहर के रहने वाली सबीना भी हमारा प्रोग्राम से मजा लेते हैं, पुरानी नगमे सुनकर काफी मजा लेते हैं। और सभी ना आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। रोटरडम शहर के अंदर में शीला भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और शीला को भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अब की बार लता जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है, एडो फिल्म ममता। रोटरडम की रहने वाली गीता रॉय भी तार किया है और प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं। शुभ दिन पेश किया जा रहा है, चले मिलकर सुनते हैं फिल्म ममता का गाना लता जी की आवाज में, गीता रॉय ने बांग किया है।

पुरानी फिल्म ममता का गीत भी इसकी गई लता जी की आवाज में, रहे ना रहे हम। रोटरडम की रहने वाली गीता रॉय की खास मांगी हुई गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। और ये गाना खास तौर पर इंडिया भारत देश नोएडा की रहने वाला खास तौर पर अरुणेश को काफी पसंद आया जो गीता रॉय ने मांग किया। उनको लाख लाख शुक्रिया भी कहते हैं ये खास गाना मांग करने के लिए। चले प्रोग्राम में माइटी मुकेश की आवाज में फिल्म छलिया का गीत पेश किया जा रहा है। 1960 तक का फिल्म है, फिल्म छलिया, उसी फिल्म का गाना माइटी मुकेश की आवाज में आप सुनेंगे। और रोटरडम की रहने वाली शीला ये गाना आज के ये प्रोग्राम में मांग किया है। रोटरडम शहर के अंदर में बहुत सी सुनने वालों है जो रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, इसी तरह से शीला भी प्रोग्राम सुनते हैं और ये गाना को मांग किया है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में माइटी मुकेश की आवाज में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। और ये गाना को मांग करने वाली थी खासतौर पर रोटरडम शहर के रहने वाली शीला। शीला ये गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। इस वक्त पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और बहुत से सुनने वालों है जो प्रोग्राम देश विदेश में सुनते हैं। हेलन सूरीनाम देश में भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं। खबर किया है कि हमेशा रेडियो SBS का प्रोग्राम घर पर सुनते हैं इंटरनेट के सहारे। शुक्रिया, धन्यवाद। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। मॉरिशस का रहने वाला दुष्यंत जेंगरे हमारा प्रोग्राम भी इस वक्त सुनते हैं मॉरिशस में। और एक गाना मांग किया है लता एन मुकेश जी की आवाज में, मनोज कुमार का फिल्म, फिल्म का नाम शोर। गाना का बोल है पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। दुष्यंत जिंगरे लीजिए आपके मांगे हुए गाना पेश किया जा रहा है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और ये गाना दुष्यंत सभी सुनने वालों के लिए बस पेश कर रहे हैं। ऑनलाइन देश के अंदर में झूरा मौसम है, ना जाने कौन सा मौसम है इस वक्त मॉरिशस में, जबकि दुष्यंत ये गाना मांग किया है पानी रे पानी।

पुरानी फिल्म शोर का गीत पेश किए गए मुकेश और लता जी की आवाज में। गाना का बोल पानी रे पानी, मॉरिशस का रहने वाला दुष्यंत जिंगरी ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया। और दुष्यंत भी खबर किया है कि इन दिनों मॉरिशस में काफी जोर तोड़ से बारिश भी हो रहा है, इसलिए आज की प्रोग्राम में ये गाना मांग किया। दुष्यंत आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है और प्रोग्राम रेडियो एसबीएस का जरूर सुनते ही रहना, हर एक को बस खबर करते ही रहना। उत्तराखंड लाइटसराइन गिरधारी स्त्रात का रहने वाला राजन गिरधारी भी हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं। राजन गिरधारी खबर किया है गर्मा गर्म कॉफी के साथ अपना गार्डन में बैठे हुए हैं, अपना टाउन में बैठे हुए हैं, हमारा प्रोग्राम हाई वॉल्यूम के साथ बस सुनते हैं। और एक गाना मांग किया है मोहम्मद रफी की आवाज में। उत्तराखंड लाइटसराइन गिरधारी स्त्रात का रहने वाला राजन गिरधारी का मांगी हुई

एक काफी प्यार भरी गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर की आवाज में। किशोर कुमार एंड लता ने फरमाया आज की प्रोग्राम में ये काफी प्यार भरी गाना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11 और अब की बार गाना होगा कितनी अकेली, सॉन्ग बाय द लेट लता मंगेशकर फ्रॉम द

लता जी की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम था तलाश कितनी अकेली। चलिए प्रोग्राम में मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: लगता है कि अब हम गए काम से, धड़कने लगता है।
1: खासतौर पर पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। हमारे बहुत से सुनने वालों बस प्रोग्राम इस वक्त फॉलो कर रहे हैं, सभी को वेलकम। और प्रोग्राम जहां जहां पर भी आप सभी सुनते हैं जरूर और जरूर सुनते ही रहना। तलत महमूद और लता मंगेशकर प्रोग्राम में।

रेडियो SBS के जरिए तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। हेमंत कुमार और गीता दत्त की आवाज में अब की बार ये गाना आप सुनते ही रहना। फिल्म का नाम है फैशन। फैशन फिल्म का नाम, उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है हेमंत कुमार एंड गीता दत्त की आवाज में।

रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl। आशा भोसले एन महेंद्र कपूर, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है। आज की इस खास प्रोग्राम में जरूर आप सुनते ही रहना, जबकि पुरानी नख में पुरानी फिल्मी गाने आप सभी के लिए बस पेश किया जा रहा है।

महेंद्र कपूर, महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। शहर उत्तराखंड हॉलैंडी से ये प्रोग्राम बिल्कुल लाइव आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चलिए गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में पेश किया जा रहा है।

पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। लता मंगेशकर की आवाज में एक और खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और काफी पुरानी फिल्म का गीत होगा।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई है। चले अब की बार सुनील दत्त का एक खास फिल्म का गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं। फिल्म का नाम है मैं चुप रहूंगी। मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में लता मंगेशकर और बप्पी लहरी के आवाज में गाना आज के ये प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। बप्पी लहरी एंड लता मंगेशकर, खासतौर पर मिठुन का फिल्म है, फिल्म सुरक्षा, और गाना का बोल है दिल था अकेला अकेला। सभी हितनक में सभी खूबसूरत प्यार भरी गाने संगीत भरी रेडियो स्टेशन रेडियो SBS के जरिए हमेशा पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर एंड बब्बी लहरी की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम था सुरक्षा। चलिए प्रोग्राम में द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए सुनने वालों, आपकी फरमाइश से हुआ इश्तिहारी जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS के जरिए कोई भी काम काज आपको पेश करवाना है सस्ती दामों में, सभी काम काज किया जा रहा है। आप सभी का हर एक काम सस्ती दामों में बस किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए टेलीफोन नंबर है

सरगम की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। सितारों का सितारा रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं अभिजीत और खासतौर पर अलका जी की आवाज में। इंटरनेशनल खिलाड़ी फिल्म का नाम है।

पेश की गए अभिजीत और अलका जी की आवाज में खास गाना जो अभी आपने सुना रेडियो SBS के जरिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई फिल्म का नाम था इंटरनेशनल खिलाड़ी। उसी फिल्म का ये खूबसूरत गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। चलिए आज की प्रोग्राम में जावेद अली और श्रेया जी के आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है खूबसूरत नख में। आज की प्रोग्राम में जरूर आप सुनते ही रहना।

गाना जो पेश की गए जावेद अली एंड श्रेया घोषाल की आवाज में, गाना भी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गए सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। इसी तार के नंबर पर बहुत सी सुनने वालों बस अपना अपना रिएक्शंस देते रहते हैं। मोहम्मद इरफान और साथियों की आवाज में ये गाना

जाने भी दे गाना बस प्रोग्राम में सोनू निगम और सुनिधि चौहान के आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है जाने भी दे गाना जो प्रोग्राम में पेश हुआ है। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio SBS.nl

बालक की आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, शान और साथियों की आवाज में ये गाना जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में शान और साथियों के आवास में प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। आज के प्रोग्राम में खूबसूरत नगमे बस पेश किया जा रहा है कुमार सानू एंड साधना सरगम, इश्क में जीना इश्क में मरना फिल्म का नाम।

आदरा सरगम की आवाज में खूबसूरत सा प्यार भरी गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म खराम इश्क में जीना इश्क में मरना। तो चले अब की बार सोनू निगम और श्रेया जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

फतेह अली खान की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई। चले प्रोग्राम में कुमार सानू और साधना सरगम की ओर हम आपको ले चलते हैं।

खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए ये प्रोग्राम बिल्कुल लाइव आप सुन सकते हैं। चले प्रोग्राम में सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल के साथ बेला सेंडे और साथियों की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। पहली फिल्म का नाम है

और रेडियो SBS की सर ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई कुमार सानू और अलका जी की आवाज में आसराव बीट है। गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS की सर ये आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई है। चलिए गाना आज के प्रोग्राम में बस पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक खूबसूरत सा गाना होगा जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में अरिजीत सिंह के आवाज में पेश किया जा रहा है।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों रेडियो एसबीएस का वेबसाइट रेडियो एसबीएस.nl

अभिजीत और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चलिए प्रोग्राम में श्रेया और सोनू निगम की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो वेस बी एस के जरिए गाना बस पेश की गई सोनू निगम, सोनू निगम की आवाज में ये गाना भी आपने सुना, हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म का नाम, और उसी फिल्म से ये गाना भी आपने सुना। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में चले ये गाना की ओर और गाना का बोल है मुझे इश्क हुआ।

रेडियो SBS की जरिए अनुराधा पोर्टवेल जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-66 इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा तार कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं इश्क विश्क फिल्म का गीत की ओर। कुमार सानू एंड कविता, यह कहिए कुमार सानू और अलका जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है इश्क विश्क फिल्म का नाम।

आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई है। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार गाना जो पेश किया जा रहा है शान और श्रेया जी की आवाज में

शान और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए हम आपको ले चलते हैं एक बार फिर से श्रेया जी की ओर और अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है

जब वी मेट फिल्म का नाम उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई। हमारी सभी सुनने वालों जो खास तौर पर स्टूडियो की ओर तार किया है, आप सभी के तार के लिए लाख लाख शुक्रिया। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना, सभी के तार के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। अलका याग्निक एन हरि हरन। अब की बार प्रोग्राम में गाना जो पेश किया जा रहा है

हरी हरन की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त रेडियो SBS का ये प्रोग्राम को सुनते हैं, आप सभी सुनने वालों को वेलकम स्वागत किया जा रहा है। कुमार सानू

रेडियो एस बी एस की जरिए प्रोग्राम आप सभी सुनवल की सेवा में पेश किया जा रहा है। वेबसाइट रेडियो एस बी एस .com नीरज और श्रेया जी की आवाज में अपनी बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: लहरा के जल, मौसम भी है वादा भी है, उसकी गली का फासला थोड़ा भी है ज्यादा भी है।
1: द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले हम आपको ले चलते हैं मुकेश के बाद लता जी की ओर, लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

और रेडियो SBS के जरिए लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई। लता मंगेशकर के बाद मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में जरूर आप सुनते ही रहना फिल्म का नाम जब जब फूल खिले।

सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए बहुत से सुनने वालों है जो हमारा प्रोग्राम अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए बस भी सुनते हैं, लेकिन ज्यादा सुनने वालों अपना मोबाइल फोन के जरिए मोबाइल टेलीफोन के जरिए इसी वेबसाइट के जरिए हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं radio.sbs.nl।

जाना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में है। पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। चले एक बार फिर से लता मंगेशकर की ओर। लता मंगेशकर की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है आप सब।

0: गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। फिल्म बॉबी का एक गाना पेश किया जा रहा है शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज में।
1: मुझे कुछ कहना है
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम
2: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ।

शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश की गई। फिल्म का नाम बॉबी, बॉबी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। गाना कब उठा मुझे कुछ कहना है और अब की बार मुकेश जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में। चलिए मुकेश की आवाज में एक और खूबसूरत गाना साथ में होगा लता मंगेशकर। और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म बरसात की ओर, और गाना का बोल है पतली कमर है

रेडियो वेव्स में इसकी जरिए मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था बरसात, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों चले आज की प्रोग्राम में एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज में। हम आपको ले चलते हैं फिल्म चोरी चोरी की ओर।

रेडियो SBS के जरिए गाना बस प्रोग्राम में मन्नत डे और लता मंगेशकर की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चले मोहम्मद रफी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम मदर इंडिया की ओर। उसी फिल्म का ये गाना।

मोहम्मद रफी की आवाज में खूबसूरत सा गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में फिल्म नसीब की ओर। मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाज में

किशोर कुमार, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम नसीब, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गई। तलत महमूद और गीता दत्त की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता
1: हूँ। सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। मैं आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

वो बारिश की बूंदे इज आउट द फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड, एन फिल्म फन श्रद्धा कपूर एंड अर्जुन कपूर, एंड आउट द फिल्म प्यार तो होना ही था कॉम्ड गुसंग दौर आशा भोसले एंड विनोद राठौर, प्यार तो होना ही था द टाइटल सॉन्ग.

0: कौन मैं? हाँ तुम, बस तुम। ओफो, वास आउट द फिल्म अजनबी एंड आउट द फिल्म चौदह फेरे कंठ सौंदो रेखा भारद्वाज राम सीता संग द्वारे।
1: रत

मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए, कभी छेड़े, कभी बात करे, राधा कैसे न जेले बस अर्ध फिल्म लगान एंड अर्ध फिल्म प्यार तूने क्या किया कॉम्थ सॉन्ग दूर सोनू निगम एंड अलका याचिक द टाइटल सॉन्ग।

सुना है तेरे दिल पे मेरे, कहीं ना कहीं नाम लिखा है इसका सॉन्ग दो श्रेया घोषाल एक वाम आउट द फिल्म सनक, आउट द फिल्म टाइगर जिंदा है कम दाग सॉन्ग दो आतिफ असलम दिल दिया गल्ला।

दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है खबर मगर चुपके चुपके। ये बेहतरीन गाना आपने सुना कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म परदेस से। और अब आप सुनिए कूली नंबर वन से कुमार सानू और अलका याचिक की आवाज़ में, तुझे मिर्ची लगी तो मैं।

0: शुभ मंगल सावधान से आपने सुना आयुष्मान खुराना की आवाज में मेरे लिए तुम काफी हो। और अब आप सुनिए परदेसिया ये सच है पिया द रीमिक्स।
1: परदेसिया ये सच है पिया।
2: Yo, listen!

कितना प्यार करते हैं तुमको सनम, मेरे दिल से पूछो ना। आपने सुना फिल्म बनारस से हिमेश रेशमिया की आवाज में। और अब आप सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज में अगला गाना प्रोग्राम रेडियो SBS का। फिल्म धूम 2 से आप सुनिए क्रेजी क्यारे।

मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है वॉज आउट द फिल्म आशिकी एंड इज गजोंग डोर उदित नारायण एंड अनुराधा पौडवाल। Het volgende liedje in het programma Gitom Kelleher is gezongen door Nawazuddin Siddiqui. Uit de film Bole Churia komt Swaggy Churia.

सुन वालों, घड़ी की ओर देखा जाए 6 मिनट बाकी है 6 बजे रे बे। अभी प्रोग्राम में खबरें होगा, खबरें के बाद तुरंत प्रोग्राम में मृत्यु समाचार यानी कि दुख की खबर पेश किया जाएगी।

कोई चल दिया है अकेला, कोई रह गया है अकेला। ऐ दुनिया के मालिक, तूने कौन सा खेल खेला। सुनवलो रेडियो SBS के जरिए यहाँ से प्रोग्राम में मृत्यु समाचार यानी कि दुख की खबर पुकारा जा रहा है। आप लोगों से निवेदन और गुजारिश किया जा रहा है गौर से सुनने के लिए। Utrecht, Overvecht, Lissenstein, Dreef, nummer 23, nummer 23 से समस्त लड़कन राम खिलावन बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं कि गत रविवार 5 तारीख जुलाई 28 साल की आयु में स्वर्गीय लोचे राम खिलावन की पत्नी सरिता, रेशमी, माया, अजय और सूरज के मां प्रकाश, शारदा और लक्ष्को के सास विशाल, रानी और किरण के नानी शिवानी के ननिया सास इलाइना, इलाइशा और इफानो की आजी किलानी फीना, रायन, वियाइशा और इनाया के परनानी। यूट्रेख्ट, ओवरवेक्ट, लिसेनस्टाइन, ड्रेव नंबर 23, नंबर 23 की रहने वाली सीता राम खिलावन की मृत्यु हो गई है। सुनने वालों से निवेदन और गुजारिश किया जा रहा है खबर को और जान पहचान वालों तक पहुंचा देने के लिए। अर्थी की आखिरी दर्शन करने के लिए आप हर एक को मौका दिया जा रहा है। बृहस्पतिवार 9 तारीख जुलाई, डोंडरदाग 9 जुली, साफंस फन क्वत ओवर 7 तो क्वत ओवर 8 पता आपको दिया जा रहा है। आउटवाट सेंट्रम डोम स्टेड प्रोस्ट वेटरिंग नंबर 8 यूट्रेख्ट लेइडसे रैन में। अर्थी सोमवार 13 तारीख जुलाई, मांडाग 13 जुली ओम 12 uur क्रेमेटोरियम डोमस्टेड प्रोस्ट वेटरिंग नंबर 8 यूट्रेख्ट लेइडसे रैन में दाह संस्कार किया जाएगी। सुनने वालों से निवेदन और गुजारिश किया जा रहा है खबर को और जान पहचान वालों तक पहुंचा देने के लिए। रेडियो SBS इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में शोक सहानुभूति पेश कर रहे हैं और ऊपर वाला से यही प्रार्थना किया जा रहा है इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में पूरा पूरा शक्ति देने के लिए। रेडियो SBS आप लोगों के दुख में पूरा और पूरा शामिल है। इसी तरह से रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना प्रोग्राम में मृत्यु समाचार दुख की खबर जो पेश की गई है।

रेडियो SBS के जरिए भी आपने सुना प्रोग्राम में मृत्यु समाचार, दुख की खबर जो पेश की गई है। कल दिन में ठीक 12 बजे ये मृत्यु समाचार जो है एक बार फिर से प्रोग्राम में पुकारा जाएगी रेडियो SBS के जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना। 6:00 प्रोग्राम में 10 मिनट व्यतीत हो चुका है, 3 मिनटों ओवर सेस स्टूडियो तय हो चुका है और एक सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश होगा, खासतौर पर दुखित परिवार राम खेलावन के लिए और वो भी रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। और इस भजन के बाद सेविका नीता की जरिए बस प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। मैं आप सभी सुनने वालों से मिलूंगा कल सुबह ठीक 7 बजे।

दिल का रिश्ता तो किस्मत से बनते हैं, दिल का रिश्ता तो किस्मत से बनते हैं, वरना मुलाकात तो हजारों से होती है। राम राम, नमस्कार और सलाम वालेकुम सुनने वालों, आप सुन रहे रेडियो SBS और मैं हूं आपका सेविका नीता।

सुनवाला, कुछ देर पहले आपने सुना मृत्यु समाचार। आपसे गुजारिश और निवेदन है कि आप ये खबर अपना फैमिली तक और जान पहचान तक या फ्रेंड्स तक पहुंचाने के लिए रेडियो SBS का पूरा टीम के तरफ से ये गुजारिश है

यहाँ से यहाँ सुनेलो हम आपको ले चलते हैं पहला नगमा की ओर और आपको सुनाएगी शैलेंद्र सिंह और फिल्म का नाम है बॉबी।

मैं शायर तो नहीं। फिल्म बॉबी से निकाला है और आपको सुनाए है शैलेंद्रा सिंह। फिल्म अनामिका द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर की आवाज में।

0: बाहों में चले आओ, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर की आवाज में सुनने वालों आपने सुना। फिल्म का नाम है अनामिका। इस बार बनारसी बाबू, फिल्म का नाम है बनारसी बाबू। रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले।
1: कमर में

0: रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले। फिल्म का नाम है चोरी चोरी।
1: सबके दिल तड़पाएंगे, सबके दिल

0: जो होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा। बात हमारे महफिल में अपना ही चर्चा होगा, अपना ही चर्चा होगा, अरे अपना ही चर्चा होगा।
1: हाँ सुनियो लो, हमसे कर ले दोस्ती। दोस्ती करना है तो आप जरूर तार कीजिए। तार का नंबर है 0302-62-66-11। कुछ कहना है
0: हमसे कर ले तो
1: या बात करना है तो आप जरूर तार कीजिए।
0: और भी आराम से फिर सोचना, पहले मजा उड़ा ले, ले, ले, ले, हमसे कर ले दोस्ती।
1: रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले, फिल्म चोरी चोरी।
2: तोरे जैसी छोरी होती कोई।

0: चोरे जैसे छोरी होता गांव में हमार। इसी फिल्म से निकाला है।
1: तिजोरी ऊपर है और आपसे पहले वहाँ मैं पहुँचूंगी।
2: अरे आप एक दूसरे को जानते हैं?
3: जी नहीं। जी हाँ, 3 दिन पहले मैं न्यूयॉर्क में इनको एक पार्टी में मिला था। बास साहब, इनका तो कोई जगह भी नहीं। वो कथकली के ठुमके लगाकर हिंदुस्तानी गाने गाकर अमेरिकनों को बेहोश करना इन्हीं का काम था।
2: अच्छा जी हाँ, लेकिन वो बेहोश मेरे गाने सुनकर नहीं, इनके ताने सुनकर हुए थे। ये एक तान तोड़ते, दो चार इधर गिरते, दो चार उधर गिरते, और आखिर में सब के सब बेहोश पड़े थे। तो हमें भी बेहोश कीजिए ना गाना गाके, प्लीज।
3: ठीक है, लेकिन एक शर्त है, इनको भी मेरा साथ देना होगा।
2: दूंगी, लेकिन मेरा साथ पाकर आप बहक गए तो हो जाइए शुरू।

संसार की हर अशय का टाइटल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी ढूंढ किशोरदा फिल्म धमकी।

कली से बाहर से फिल्म धमकी और आपको सुनाई किशोरदा रॉक एंड रोल क्वीन आशा भोसले और साथ दे रहा है किशोर कुमार फिल्म डबल क्रॉस।

एक मुट्ठी आसमान सुनने वाला हूँ आप सुन रहे रेडियो SBS, मैं हूँ आपका सेविका अनीता किशोर दा और वानी

प्यार कभी कम ना करना सनम। किशोरदा और वानी जयराम की आवाज में फिल्म एक मुट्ठी आसमां।

नहीं पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत।

मेरी जान, माना ये मोहब्बत सजाए। द मैन विद द डायमंड वॉइस मोहम्मद रफी और साथियों के आवाज में आपने सुना फिल्म का नाम है हस्ती जख्म। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर। साथ दे रहा है द मैन विद द डायमंड वॉइस मोहम्मद रफी।

तिंगिल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर द मैन विद द डायमंड वॉइस मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म हीरा। इसी फिल्म हीरा से निकला है ये गीत और आपको सुनाई। हाँ आपको मालूम है

अहमद रुश्दी की आवाज में फिल्म का नाम है जाल। हाँ सुनने वालों, आप सुन रहे हैं रेडियो SBS फिल्म जोशीला, और आपको सुनाएगी किशोर दा द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर।

जो बात इशारों में कहे तो नहीं समझे। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर के आवाज में, फिल्म जोशीला। इस बार रॉक

कॉरल क्वीन आशा भोसले हो तो पे तेरा नाम जवार अबता फिल्म का नाम है फिल्म कश्मकश।

जमैन विद डायमंड वॉइस मोहम्मद रफी। आज मौसम बड़ा बेईमान है, फिल्म लवर।

0: कि कोई तेरे खातिर जी रहा। निजाम के आवाज में ये एल्बम का बोले अ क्लासिकल लव मैसेज।
1: Come on, yo, wish you were ready.

सारंगा तेरे याद में, उमर वागिद हुसैन के आवाज में और एल्बम का बोल है 14 सुपर सोल्स। इस बार

फिल्म लागा चुनरी में दाग, सुनिधि चौहान, श्रिया घोषाल और साथी के आवाज में आप सुन रहे हैं।

फिल्म का नाम है वीर जारा। हाँ, सुनने वाला आप सुन रहे हैं रेडियो SBS। मैं हूँ आपका सेविका अनीता और ये स्पेशल गीत है समवन स्पेशल के लिए। और ये समवन स्पेशल रहती है सूत्रमेर शहर में, सूत्रमेर के रहने वाली आश्वर्या।

तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, लता मंगेशकर। फिल्म वीर जारा, और स्पेशली पेश किया है ऐश्वर्या के लिए।

0: मुलाकात हो गई। उमर वागिद हुसैन के पास में एल्बम का बोल है 14 सुपर सोल्स वॉल्यूम 3। इस बार लकी सिंह आपको सुनाइए।
1: Okay, that was it. The first Okinawa's family, Roman.

उमर वागिद हुसैन के वास में एल्बम का बोल है खफालक जवनिया सुनने वालों इस प्रोग्राम में

0: समझे इसी गीत के साथ सुनने वालों हम आगे इजाजत लेंगे। आशा और उम्मीद करती हूँ कि प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आया होगा। शुक्रिया अदा करती हूँ जो रिएक्शन दिया, स्टूडियो में तार किया,
1: जिंदा है।
0: शुक्रिया। हाँ सुनो लो, हमारा मुलाकात होगा अगले बुधवार को और आप जरूर प्रोग्राम सुन

0: इसी रेडियो स्टेशन के जरिए रेडियो SBS, मैं हूँ आपका सेविका अनीता।
1: ओ जान जान जान,
0: एक शुभ रात्रि।
1: तुम हो मेरी,
0: हैव अ नाइस इवनिंग।
1: ओ मेहरबान,
0: और हाँ, मुस्कुराते रहना।

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होने को तो कुछ भी हो सकता है।